सिरे करा लेगा, अड़त नोड़िए मोरे करा लेगा, उसरा उसरा निनय करा लेंगे, उड़ने उड़ने मरक करा लेंगे।

योषा गणेन वरदध्नि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्र घोषा रोषात् कलिम् विदधते कगुभश्च कुम्भा शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मे शमित्र शतपत्र गतालिवर्गा हर्तुम् श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्र

कदाचलपते तव सुप्रभातम् कन्दर्पदर्पहरसुन्दरदिव्यमूर्ते कान्ताकुजाम्बुरुहकुड्मलोलदृष्टे कल्याणनिर्मलगुणाकरदिव्यकीर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् मीनाकृते कमठकोलनृसिंहवह्निम् स्वामीन् परश्वततपो